पर गुरबाणी गवाह है कि बाबा नानक गुरुदेव नानक अपने जीवन विच जदों जदों भी बोले जो भी शब्द मुख चो उचारण कीते वो तत्काल परमात्मा दी दरगाह विच प्रवान होए। साहिबां दा फरमान है गुरबाणी द्वारा, गुरु नानक बोले दरगहें परवान।

गुरु ते परमेश्वर विच कोई फर्क नहीं, ये दोनों एक समान हन। सो गुरु नानक देव जी का बोलिया होया सदा ही प्रवान होया, और मेहरवान जो सदा मेहरां दा दाता है, जो भी उसका दास बन

एतन होती खाक में मारी गोर करे, एतन होती खाक निमाणी गोर करे। आज मिला शेख फरीदा तातम कुंजड़िया, आज मिला शेख फरीदा तातम कुंजड़िया, मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम न आइए झूठी।

चलने चल हार बिचारा ले मनो चले चलन हार बिचारा ले मनो गंडेंदिया छे मार तोड़ेंदिया सिखनो जिमें पुछे आसमान फरीदा खेवट किन गहे जलन गो

लाश करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सूझे कैस कबीर सूरे प्राणी कैस कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो।

रंग तुरंग करीब मस्त रंग तुरंग करीब मस्त सब लोग सिदासी कावी से खुसाए खां सबे उठ जासी।

दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख शक्तवार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए वैद ना भोले दारू लाए। साहबा ने दुख गिने ने बंदे दे। बंदे नालो बंदा विछड़ जावे ते दुखी हो जाए, जिथे मोह बनिया हो प्यो पुत्र विछड़ जान, भरा भरा विछड़ जान, मां पुत्र विछड़ जान, मावां धियां विछड़ जान, दुख वापरदा। मगर साहब का इशारा होर पासे कर दे, कहिंदे ने वाहगुरु नाल विछड़िया होया बंदा किन्ना दुखी। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक नित दी भुख, राती सुते खा के दिने फेर खली। हर वेले मनुख दे अंदर नहीं उस भुख की गल जिहड़ी रोटी की लगती, एक होर भुख की गल बाबा जी कहिंदे ने जिहनूं तृष्णा कहिंदे आप, मिटण विच ही नहीं आउंदी। सब कुछ हुंदियां सुनियां भुख कायम है, खा पी के भुख कायम है, उस भुख ने बहुता दुखी कीता है। रोटी की भुख बंदे ने जर ली होवेगी, लेकिन तृष्णा च बंदा बड़ा दुखी हो। एक दुख शक्तवार जमदूत, एक वड्डा दुख बंदे वास्ते मौत तो बाद की बनेगा, लेखा किवें देवांगे, सुरखरू किवें होवांगे। चौथी थां ते महाराज कहिंदे ने एक दुख रोग लगे तन तहाए, आ कदे कदे शरीर ते भी दुख आ जांदा। तू किथे किथे दवाई लावेगा, किस किस दुख दा दारू करेगा, पर जदों गुरु दी रहमत हो जावे ना सारे ही दुख दूर हो जाते। दुख बिन से पूर्ण पई खाल, कदों जदों गुरु की बख्शिश हो जावे, रहमत हो जावे, सतगुरु दयाल हो जान, यह गल वखरी है। सत्संगत इस तो कुछ साहबा ने कहा ना, गुर पूरे जब भय दयाल। ऐसा मतलब नहीं समझना कि जदों कदे महाराज दयाल होणगे तां किते गल वापरेगी। सतगुरु सदा दयाल है भाई, गल इनी है कि उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते मैं कोई यतन कीता है कि नहीं, मैं निम्रता नाल उहदे चरणा ते मत्था टेकिया है कि नहीं, मैं उहदी रहमत वास्ते झोली फैलाई है कि नहीं। जद भी मैं उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते निम्रता सहित झोली फैलाई, मत्था टेकिया है, रहमत अवश्य होई, और उस रहमत दे नाल मेरे दुख दूर होए ने। इन्हां नूं दुख किया है ते इन्हां दुखां दे पिछे जो इन्हां दे कारण ने उन्हूं दोख भी किया है। दोख कहिंदे ने दोष नूं, गुनाह करिए ते दुख पल्ले पैंदा। ते पावन बाणी च तोका हुंदी है ना, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, इन्हां नूं एक एक दोष है। मृग नूं कन्नां दा दोष है, सुनन दा कुत्ता शौक है इसनूं, कंडे हेड़े दी आवाज च फस के मारिया ते फड़िया जांदा है। मच्छी नूं जीभा दे स्वाद दा रोग है, दोष है। जेवा सादी लीलत लोह, स्वाद दी मारी होई बाहरों आया गडोआ या बाहरों आया जो कुछ भी मसाला लगा है कुंडी दे नाल उहनूं निकल लैंदी है, कुंडी निकल लैंदी है, फस जांदी है। भृंग नूं भंवरे नूं सुगंधी दी तीबर इच्छा ने रोगी बना रखे, पतंगे नूं नेत्रां दी भुख ने, अखां दी भुख ने, रोशनी वेख के बावरा हो जांदा है। हाथी नूं काम दा रोग है, मगर महाराज तां कहिंदे ने बंदे दा की हाल होवेगा। पंच दोख असाध जामे तां की केत कास, बंदे नूं तां पंजे ही चमड़े ने। इह कन्नां तों वी कमला, ए नासा तो भी कमला, अखा तो भी कमला, जीवा तो भी कमला, इंद्रियां सारियां तो कमला, काम तो भी कमला, एदा की हाल होगा। सतगुरु जिस दिन कृपा करते ना उस दिन इन्हों दोषा तो बचाते हैं। बंदा जिस दिन दोख तो बच जाता है, दोष तो बच जाता है, उस दिन दुख तो भी बच जाता है, क्योंकि दोष तो ही दोख तो ही दुख पैदा होता है। दोष नहीं रहा, दोख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। गुर पूरे जब पहे दयाल, दुख बिन से पूरन पही कहाल। हुण सतगुरु तां रहमत कर दित्ती, मैं की करां, मैनू की करना चाहिए। साहिबां ने साडे वल संकेत कीता कि हुण तूं अपना फर्ज पछाण। गुरु ने तैनू दोषां दे चिक्कड़ विचों कढ के दुखां तों बचाया, तैनू की करना चाहिए। ओ संकल्प महाराज ने बख्शिया, पेख पेख जीवां दर्श तुम्हारा, सतगुरु जुड़िया रवां तेरे नाल।
चरण कमल जाई बलिहारा तेरे चरणा तो वारने बलिहारने जांदा रवां। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा अज तेथों विछड़ गए मुड़ के दोष आ गए मुड़ के दुख आ जाणगे। तेरे बिना कौन है जो बचाई रखे दोषां तो ते दुखां तो। साध संगत से प्रीत बन आई पूर्व कर्म लिखत तुर पाई ए भी तेरी रहमत। जप हर हर नाम अचरज प्रताप भगती च लग के ऐसी सोहनी गल बनी है ऐसा आश्चर्य प्रभाव वाला काम होया प्रताप वाला काम होया कि जाल ना साके तीने ताप हुण आद ब्याद उपाद वापर नहीं सकते। हुण ता मेरे ते रहमत करो मेरे सतगुरु निमुख ना विसरे हर चरण तुम्हारे। तुहाडे चरणा कमलां तो एक पल वास्ते भी ओझल ना होवां ओले ना होवां भुल ना जावां तुहानू। नानक मांगे दान प्यारे मैं तो यही दान मंगदा निमख ना विसरे हर चरण तुम्हारे। बंदा एक चादर दी बुकल मारी तुरिया जा रहा सी सिखा ने वेखिया कहन लगे महाराज कोई सुइया जापदा है कोई खुफिया जापदा है जासूस लगदा है जेड़ा किले दे नेड़े लंघिया जांदा है मूंह सिर छुपा के तुरिया जांदा है। बुकल कैसी मारी सू पुछे बंदा तू ऐसे बड़ी ठंड वापरन डई किवें बुकल मारी सू जरूर एदे कोल कोई गुजे हथियार होने ने और सू लैण वास्ते तदे अपने आप नू छुपा के ये अपने नेड़े तेरे फिरदा है। महाराज कहन लगे फड़ लो सू सिखा ने जाके घेर लिया फड़ लिया दा। रोंदा धोंदा कुरलाउंदा बाहां छुड़ाउंदा तरले मारदा गुरु के हाजिर कीता गया। साहब कलगीधर पातशाह कहन लगे कौन है तू मूंह नंगा करके कहन लगा पातशाह तुहाडी शोभा महिमा सुनी मैनू गरीब नू कोई नहीं जानदा मगर गरीब नवाज तुहानू सारे जानदे ने मैं भी जानदा जो कोई तुहाडे बारे सुने है मैं बेनती करांगा मैनू खिमा कर दिओ कौन है तू। कहन लगा जी पठान पुत्र हां। किवें आया साहिब इधर के महाराज एवें बिपता दा मारिया आ गया। सिख कहन लगे महाराज आ चादर खुलाओ इहदी पुछो इहदी बुकल विच की है। अखां नीवियां करके कहन लगा सच्चे पातशाह मैं बेनती करांगा मेरा परदा रहण दिओ। हर कोई चाहुंदा मेरा परदा बनिया रहे जो कुछ मैं अंदरों हां जो कुछ मेरे अंदर है ढकिया रहे क्योंकि हर किसी बंदे कोल नंगा करन जोगा चंगा चंगा कुछ नहीं है। जिन्हां कोल चंगा चंगा है वह परदा करन भी किस गल दा बल्कि वह तो इश्तिहारबाजियां कराउंदे ने किसे बड़े चंगे हैं। जिन्हां कोल थोड़ा बहुत भी चंगा है बल्कि इथों तक जे को एक करे चंगियाई मन चित बहुत बफावे छोटी मोटी नेकी हो जावे ना संसार नूं दसना चाहुंदा है लेकिन बदियां ते परदा पाई रखना चाहुंदा है कोई किसे नूं नहीं दसदा। सजना तो गहरे सजना नूं इथों तक पति पत्नी एक दूजे नूं अपनियां कमजोरियां तक नहीं दसदे। कोई विरले हुंदे ने जिहड़े अंदरों बाहरों हुंदे ही शुद्ध ने परदे वाली गल ही कोई नहीं। तरला मारन लगा कहन लगा साहिब जी मेरा परदा रहण दे। साहिब मुस्कुरा पए साहिब जान देने दा परदा की है पर इह तां आप परदे ढकण वाले ने इहदा इह परदा ला के उहदा दोई जानी परदा कज्जण ते आए ने। कहिंदे ने नहीं लाओ इहदा खेस इहदी चादर ला दे। रोण लग पिया सिखा ने एक नहीं सुनी उन्होंने चादर ला दिती ओदी बगल च निका जिहा मरियल जिहा कुत्ता पाया है ओदी संगी ते उन्हें हाथ दिता है। कुत्ते दियां अखां बाहर ने जवान बाहर नूं आई मर रहा छड़ दिता कुत्ता थले डिग पिया। साहब कहन लगे कि यही तेरा परदा सी सिर नीवा करके खलोता है। साहब कहन लगे क्यों की गल है बोलदा क्यों नहीं। कहन लगा महाराज कई दिनों का भुखा सा देसों प्रदेश आ गया सा किरत करन वास्ते इत्थे बादशाहत ने ऐसी अफरा तफरी मचाई हुई है वे किसे गरीब नूं रोटी कित्थों मिलनी इत्थे तां लुटेरा खा सकदा डाकू खा सकदा गरीब दी कोई जान नहीं या तुहाडे वर्गे दे सकदे ने खा सकदे ने जिन्हां ने उस अफरा तफरी का कोई असर नहीं लिया जिहड़े उस अफरा तफरी नूं मिटाउण वास्ते तुले होए ने तुहाडे लोकां दे लंगर चल सकदे ने। पातशाह मैं गरीब उन्हां नूं फुरसत नहीं किसे गरीब वल वेखण दी ते दूजे जिहड़े उन्हां दे सताए होए ने उंज नेड़े नहीं लगण दिंदे। मैनूं मुसलमान पठान नूं
रोटी खादिया कई चिर हो गया, मंगना मेरी शान के खिलाफ है। कैसी प्यारी गल है, जिसले साखी पढ़ने पठान कहता है मंगना पठान की शान के खिलाफ है। सिख वास्ते भी एवे पावन बाणी कहती है, लोक तिकार कहे मंगत जन, मांगत मान ना पाया। मंगण वाले का कोई मान नहीं, तरकारा तो मिल सकदियां ने, मान नहीं मिल सकता। ऐसे करके गुरु का सिख मंग के नहीं खादा करके खाता, मान नाल छैंदा, तरकार नाल नहीं खान नूं तैयार। कहिंदा जी पठान पुत्रा मंगण जोगा भी नहीं, भुखां दा मारिया लुटन जोगा भी तां नहीं, मेहनत मजदूरी भी कोई नहीं मिलती। कई दिनों का भुखा का मारिया, अज मैं यह फैसला कर रहा भी जो मिल गया खा लेना, तो यह मरियल जहा कुत्ता मेरे काबू आ गया। मैं सोचता सा कि नुकरे बह के इसे चब लव, इसे भुन के जिमें भी हो खा लवान, तो अपने पेट की अग बुझा लव। साहब कह लगे लंगर छकाओ, सोहने वस्त्र पुआओ। कह लगा महाराज मैं थोड़ा दुश्मन हो सकना, दोखी हो सकना, लंगर छका रहे हो तुहाडी बड़ी कृपा है, क्योंकि तुहाडे दर ते तां न्याय वापरदा है। साहब कहन लगे तू इत्थे ही रहेगा। कहन लगा महाराज सारे मैनू शक दी निगाह नाल वेखणगे। साहब कलगीधर पातशाह हस पए, कहन लगे नहीं इत्थे भाई कन्हैये वर्गे बेअंत ने, जिहड़े किसे नू दुश्मन नहीं समझदे, किसे नू वैरी नहीं जानदे, तू इत्थे रहेगा। आम उन्हां समय च टकियां विच रसीने मिलदे सन। साहबा ने रुपया रोज दा ला दिता, कहन लगे इहनू गुजरान मात्र रुपया रोज दा दिओ। कहन लगा साहब जी किस गल दा, तुसीं इह रुपया रोज मैनू किस गल दा बख्श दिओ। साहब कहन लगे भुखां दा मारिया, गरीबी दा मारिया, देसों परदेस आया कमाउण वास्ते, तेरे बाल बच्चियां वास्ते, तेरी किरत मात्र, कि महाराज मैं करांगा की। साहब कहन लगे जो तेरा जी करदा है, इत्थों कुछ होवे तेरा शरीर जरे ते कर लई, ना कीता जावे तां वी कोई डर नहीं। गद गद हो गया, गुरु कियां रहमतां पा के फिर डेरा नहीं छड्डिया, गुरु का डर नहीं छड्डिया, सेवा च लग गया। इतनी सेवा कीती गुरु के सिखां दे नाल जूझदा ही शहीद हो गया, गुरु के चरण नहीं छड्डे। कई बारी सिखां ने कहा हुण तां तकड़ा हो गया, पैसे भी हो गए, हुण तां निकल जाए इत्थों, तेरी जात बरादरी वालिया ने, तेरे बंदियां ने वेख लिया तैनूं काफिर कहणगे, तैनूं दोषी करार देणगे। उह कहिंदा नहीं, दोष निकल गए जीवन विचों, जिसने खुदा नाल जोड़े है इन्ना परउपकार ते इन्नी समदृष्टि बख्शिश कीती है, जे उहने मेरे नाल वैर नहीं कमाया, उहदियां ने मेरे नाल वैर नहीं कमाया, ते मैं इहनूं छड्ड के होर किहदे कोल चला जावां, इहदे चरणां दे विच बाकी दी जिंदगी बतीत होवे। इह सच जानना इक पठान दी गल नहीं, साढ़े किन्ने ही दुख, ओदी एक भुख का दुख महाराज ने दूर किया, हमेशा वास्ते विक गया गुरु चरणा तो। साढ़े किन्ने दुख सतगुरु दूर कर दे, गुरु के सिख का की फर्ज बनता है। वह सदा यह गल हिरदे च धारण करके रवे कि साहब तेरे दर तो सरदारियां पाईया ने, भुखा मिटिया ने, मान मिले है, भरम मिटे ने, दूई मिटी है, हिरदे नू शांति प्राप्त हुई, बड़े सुख पाए ने। मेरे ते तेरी रहमत होवे ते होवे कि मैं तेरे नाल जुड़िया जुड़िया अपना जीवन सफला कर जा। आपां हुणे शब्द पढ़िया सी ना, डिगन डोला तऊ लो जो मन के भरमा। बंदा डिगदा डोलदा ते डगमगाउंदा सिर्फ उन्ना चिर है जिन्ना चिर मन च भरम ने, दुई भाव है। जिसले हिरदे विचों दोष निकल जाण, भरम निकल जाण, बंदे नूं चैन आ जांदा। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लो दुखिया, गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया।

होतना बारंबार जो बंसल पाके पोंगिरे बोरना लागेगा जो बंसल पाके पोंगिरे बोरना लागेगा गुर सेवा ते पद कमाई तब ए मानस दे ही पाई मानस जन्म अमोल पायो वृथा काहे गवाओ गुर सेवा ते भगत कमाई सब ए मानस दे ही पाए इस दे को सिमरे देव सदे ही पाजू हर किसे

जब लग बिकल पाई नहीं बाणी पज लै रे मन सारे पानी अब ना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना भजया जाए ए तेरे अवसर ए तेरी बार

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन किए निरार्थ दाम। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरार्थ दाम। फिरत फिरत बोते जुगहारे हो,

दूसरा रास्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत साहब सानू दसते ने किते जातरक नू वेख लै पपीए नू वेख लै जेड़ा स्वाती बूंद ते पिछे पपी पपी प्या करदा साहब बाणी विच कहिंदे ने

स्वाति बूंद दे पीछे प्या तड़पदा है आसमान वाल, मुंह खोल के ते पपियो पपिया प्या करदा है, तरले करदा है, जोदड़िया करदा है मेरे पातशाह ते, स्वाति बूंद मेरे मुख विच पा देवे ते मैं तृप्त हो जाऊं। सब आंदे ने प्यारिया किते एदां दी प्रीत कर लै, एदां दा स्नेह कर लै, एदां दे गुरु नाल प्यार पा लै, फिर ते तेरे जीवन दी गल बन सकदी है, नहीं ते तेरा जीवन अधूरा है।

होया बरस पैंदा होया मी कितना सुहावना लगता है उन्हूं आस लग जांदी है कि हुण स्वाती बूंद भी डिगेगी ते मेरे मुख विच पै जावेगी। अगलियां पंक्तियां विच मेरे सतगुरु सानू समझाउंदे होए प्यारे आ कलजुगी जीवां नूं संबोधित करदे होए सतगुरु आंदे ने हर प्रीत करी जाए एह मन दीत ऐसा स्नेह कर ऐसी प्रीत कर मन गुरु दे चरणां विच निछावर कर दे भाई।

शिव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है, एक पल भी नहीं विछड़दा त्यारिया। पाछा तू मेरे ते कृपा कर, किड़ी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याछा हजूर।

गुरु नानक दी मोर लाके धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

साहब जी रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रचना तो कृपा करदे ने ते आंदे ने

धन गुरु अर्जन पातशाह। साहब अपने मुखार बिंद तो आंदे ने एक घड़ी दिन समोको बहुत दयारे, ए मेरे मालका एक घड़ी भी एक पल भी, तेथों जे मैं बिछड़ जाना ते इंज लगदा है कितने ही जुग बतीत हो गए ने, कितना समा लंघ गया।

एडी प्यास है तेरे दीदार दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, मेरे मालिका कर कृपा मेरे दे।

कत हूँ सुचेत हो के चेतना को चार किया, कत हूँ अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, बहुत प्यारी रचना अकाल उस्ताद विच फरमान दी। कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साढ़े हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलती है उसनों मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने पाई कन्हैये उते, जिस वेले उसने दुश्मन नू दुश्मन ना समझिया, ते फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, उहदे उत्ते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दिओ, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़के कह दिओ आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दिया, हजारां लोग तुहाडे कोल आउणगे। इह पहल तूं करनी है। प्यार असां देना है, लैणा नहीं। देवे तां ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाइए ना भाई। वह नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, ते मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावें कोई मोमन वेख रहा है, भावें कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया एक कोई पुकार है केड़ी।

गायत्री को गुपत जप्यो, कौं होय के तुरका पुकारे बांग देत हो, कहूं को कुकाब होय के पुराण को पढ़त मत, कतहूं कुरान को निदान जान लेत हो, काऊ बेदरीत काऊ तांस्यो बपरीत, काऊ त्रिगुण अतीत काऊ सर।

कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो।

पावक में अर पवन हूँ मैं, पृथ्वी तल में सुकहा न जाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक

सुरत न श्रवणन बचन मधोकी है, अंग अंग हीन दीन कैसे बरमाल करो, मस्तक नाहे।

मन में ना गुरमत, गुरमत में ना मन, नेचल हुए ना उन मन लिवलाइए। अंग अंग भंग रंग रूप

habla de Tegrate, mira. मेरे हृदय च कपट है ते तू मेरे कपट नू जानना मैं भी कुछ जानना मैं सिर्फ इना जानना कि तेन बख्शना भी आउंदा जे तू साडे दिल दिया जानना है ते तेन जान के फिर बख्शना भी आउंदा वेख के साडे बारे जान के फिर खिमा कर देन दी भी गल तेरी है जे साडे वालों गिणिया जावे तो फिर तो बड़ा मुश्किल है जे मालिक तेनू प्रवान करन वास्ते तेनू प्रवान होन वास्ते तेनू प्राप्त करन वास्ते मैं अपने वाल वेखा ना मेरे कोल रूप है ना मेरे कोल अखा ने ना अखा विच ओह नजर है जिहड़ी तेनू वेख ते माण सके ना मेरे कोल रूप है जिहड़ा तेनू दिखाया जा सके ना मेरे को जबान है जिदे विचों मिठे मिठे बचना नाल मैं तेनू रिझा सका बल्कि मेरी ता सुरत दे मेरी करनी दे हाथ पैर भी सिद्धे नहीं कुल हीन कह लो गुण हीन कह लो ते जिदी कुल भी कोई ना होवे जिदा गुण भी कोई ना होवे ओदी शोभा भी कादी ऐसी अवस्था च मैं तेनू प्राप्त किवें होवां तेनू प्रवान किवें होवां तेरे नेड़े किवें होवां कोई चारा नहीं हां जद ए जानना कि तेरा बिरद बख्श लैण वाला है तेरा सुभा तेरा नेम बख्श लैण दा उदों आके भरोसा थोड़ा हो जांदा है

हुण तू अपना सुभाव वे। मेरा सुभाव मैं जतन करना के बदल जावे, बल्कि तेरी कृपा हो जावे ते बदल भी सकना। पर मेरे सुभाव ते मेरी करनी वाले पासे मेरे मालिक तू ना वेखी। तू अपने सुभाव ते अपने असूल ते कायम रह। तू बख्शंद होने का सबूत दे। और कई बारी शायद ऐसे भरोसे ही तेरी बख्शिशों का सहारा है हमको, इसी वास्ते हम गुनाह कर रहे हैं। ऐसे करके भुली जाने, ऐसे करके गुनाह कीती जाने तो कोई नहीं बख्श देवेगा। हालांकि ऐसा चाहिदा तो नहीं, मैनू ऐसा होना तो नहीं चाहिदा। तेरे बख्शंद सुभा का मैं योग लाभ उठावा, क्यों ना मैं सुधर ही जावा। पर सुधारना भी तेरे हाथ है। पिछले गुनाह बख्श के अगो मार्ग पाना भी तेरी समर्था है। हुण मेरा सुभाव ना वेखना, अपना असूल ते अपना सुभाव वेख के ओदे अनुसार मेरे नाल वर्तन।

सतगुरु कहिंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां इदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

पता लगता है दिन जाग पिया, सूरज चढ़ने वाला हो गया, दिन आ रहे है, रात खत्म हो गई है, समा बदल रहे है। मोर बोलते ने पता लगता है बदल आ गए, कोयला बोलदिया ने पता लगता है सावन आ गए, पपीए बोलते ने पता लगता है हार तप रहे है। बादशाह जिसले फुल खिड़ते ने पौरिया दिया गुजारा ऐलान कर दिया ने बहार आ गई। महाराज प्रकृति जागदी है, संसार तब्दीलियां वापरदियां ने ते पता लगता है, उहदा ऐलान हुंदा है। ते सिख विच बंदे विच प्रकृति प्रवृत्ति आवे, इहदे अंदर कोई तब्दीली आवे, इहदे अंदर कोई क्रांति जागे, मनुख दे अंदर कोई होशमंदी आवे, इहदी भी कोई निशानी है, बंदे दा पता लग सकदा है। मनुख दे मन विच कोई जागृत आवे, इहदी भी कोई निशानी है। महाराज पंचम पातशाह कहते ने, भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, महाराज पंचम पातशाह कहते ने, सिखो बड़ी सुधारण जी गल है, मृद लाग गए मन गुर की बाणी, मन जागण की है निशान। जिस दिन तुहाडे मन नूं गुरु की बाणी मिठी लगण लग पवे, समझ लेना मन जागण। जिवें सारे कुछ की तब्दीलियां असीं कुछ ना कुछ संकेत लभने आ, कुछ ना कुछ इशारे लभ लैने आ, कोई इशारा हो गया पता लग गया कोई तब्दीली आ, इस तरह मन जागण की यह निशानी है कि बाणी मिठी लगे, कीर्तन मिठा लगे। ते जे इत्थे आके मानण लगे, समझ लेना मन विच कठोरता है। और महाराज कहंदे ने, जिनके चित कठोर है से बहे ना सतगुर पास, अबल तां आउंदे ही नहीं, फुर्सती नहीं, कहंदे ने वक्त नहीं मिलता। हालांकि वक्त बड़ा है, खिमा करना युग केड़ा सी, बजुर्गां ने वेखिया है जदों गड्डिया ते सफर करते सी, अज हवाई जहाजा दे सफर, उदो हाथी काम होंदे सी, अज मशीनां नाल काम होंदे, महीनिया के काम घंटिया ते आ गए। आ बीबिया कपड़े सीन बहदियां सन, महीना महीना ला के ते एक त्रियोर बनता सी, आ दो तीन कपड़े सीदियां महीना महीना हाथ दियां सुइयां नाल, अज सीते सताए मिल गए। समा तो बड़ा बचना चाहिए सी, पक्कियां पकाइयां रोटियां, पिसे पिसाए आटे, घर विच पानी, घर विच बालन, हर एक चीज की इन्नी सहूलत, बिजली के बटना ने सारे कमां नूं कितना आसान कर दिता, ते बंदिया तेरा वक्त किधर गया, तेरा समा किधर गया। तू ये नहीं कह सकता मेरे को समा नहीं, ये कह लै कि तेरे को होश नहीं, समा समा नहीं, ये तो कह सकने, ये ना कहीं मेरे को समा नहीं, ये गलत बहाना होगा किसे मनना नहीं। नीयत ना होगी, जिन्हों की नीयत होगी ना, उन्होंने गुरु की बाणी मिठी लगेगी, ताके आउणगे ते सुणनगे। ते जदों गुरु के चरणा विच मन टिक जावे, समझ लेना मन विच कोई जागृति कोई तब्दीली आ रही, ते जिन्हां नूं नहीं पई आउंदी, महाराज कहंदे ने, जिनके चित कठोर है से बहे ना सतगुर पास, वो गुरु के नेड़े बैठा ही नहीं जाता उन्हां कोल। ते जे कदे फस जान आ जान, फसे ही कहना चाहिए, जे आ जान ते फिर वो पासे मार दे वक्त कटदे ने, ओए वल छल कर झत कट दे, फिर जाए बहन कुल, क्योंकि उत्थे सच वरतदा। कुड़ियारा चित उदास, ओए वल छल कर झत कट दे, फिर जाए बहन कुड़ियारा पास, विच सचे कूड़ ना कढ़ी, मन वेखो कर निरदास। ते जे मन ना लगे बाणी विच, समझ लेना मन कठोर है, इनू नरम करना है, इनू किसे तरीके नाल बलबला के लियाउणा है गुरु की बाणी विच। पिखे नाद करन सुन पीना, हर जा सुनत आलस मन कीना, दिष्ट नाही रे पेख तंदे, चोर जाए झूठे सब तंदे, अरदास करिए कहो नानक प्रभु बख्श करी जाए, कर कृपा मुझ साध संग दी जाए।

तेरे गुण इतने हैं, तेरे गुणा नू तू आप ही जानता है, तेरे गुणा दा कोई अंत नहीं ते मेरे अवगुणा दा भी कोई अंत नहीं। जिन्ना समुद्र विच पानी है इतने साड़ी विच अवगुण हैं, कृपा कर

इते अवगुण हमारे दया करो किच मेर उपावो डुब दे पत्थर तारे ज्योड़ा अगन बराबर दबा पीतर वगे काती प्रणवत नानक हो।

किन्हीं किया परवृत पसारा, किन्हीं किया पूजा विस्थारा, किन्हीं निवल भुयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वेसा, किन्हीं ग्रह

पंडित सासत सिमृत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भजमन मेरे तर भव जल तू तारी सन्यासी विभूत लाए दे सवारी पर त्रय त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी खत्री कर्म करे सूरत तन पावे सूद वैस पर कृत कमावे मैं मूरख हर नाम छड़ावे सब तेरी सृष्ट तू आप रया समाई।

लक्षण बदल गए, सुलक्षणे हो गए, शुभ लक्षण हो गए। लक्षण कहिंदे ने जो कुछ नजर आउंदा। मनुख दी अंदर दी रहनी जिस वेले बाहर आ जांदी है लक्षण कहाउंदी। सतगुरु क्योंकि मनुख दी रहनी सुधार देंदे ने, इस करके जबान मिठी हो गई लक्षण चंगा है, चाल ठीक हो गई करते पुरख ताल दिवाया, जिंदगी ताल विच आ गई, बेताली जिंदगी ताल विच आ गई। चाल ठीक हो गई और एक कहने लक्षण जेड़े ने रफ्तार दस्तार गुफ्तार यही तो गल्लां होंदियां ने जिन्हां तो बंदा पछाणिया जांदा। पग किहो जी बनदा है भाव इस नूं अपने सजन सजाउण दा ख्याल भी है कि नहीं। और यही वजह है कि लोग तां कहिंदे ने पग बननी है, लेकिन गुरु का सिख कहिंदा दस्तार सजाउणी है, क्योंकि उन्हूं बड़ा ख्याल है कि मेरे सजन दा सवाल है, मैं सजिया सजाया गया ते सज के रहना मेरा काम। दस्तार तो पता लगता है इस बंदे दी रहनी बहनी की है, भाव वस्त्र पाउण तो रहनी बहनी तो मनुख दे अंदर दी सफाई दा ते अपने आप नूं बना के रखण दी रुचि दा पता लगदा। चाल तो पता लगदा है इहनूं तुरना आउंदा है, चाल तो ही चाल चलण दा भी पता लगदा, ते गुफ्तार तो जबान तो बोलण तो भी पता लगदा है इस दे अंदर की है। जो जीए होए सो उगवे, जबान तो ही निकलेगा जो अंदर है, अंदर बाणी है ते मुंह बाणी निकलेगी, अंदर प्यार है ते मुंह प्यार निकलेगा, अंदर नफरत है ते मुंह गाला निकलेंगी। सतगुरु की कृपा दे नाल मनुख दे लक्षण बदलते, पर उदों बदलते जदों गुरु के मार्ग पै जाते।

पहला मार्ग, पहला रास्ता, पहली जुगत। सतगुरु कृपा करदे ने साहिब धन गुरु अर्जन पातशाह साहिब कहिंदे ने प्यारे आ, कदी मच्छी नू देख लै, उदा पानी नाल किन्ना प्यार है, उदा जीवन ही पानी है। एक खिन भी ना धीरे एक पल, एक क्षण भी ओ नहीं रह सकती, दे जे पानी विचों कट दे हो ते भाई उन्हें मर जाने।

स्वाति बूंद दे पीछे प्या तड़पदा है आसमान वाल, मुंह खोल के ते पपियो पपिया प्या करदा है, तरले करदा है, जोदड़ियां करदा है, मेरे पातशाह ते स्वाति बूंद मेरे मुख विच पा देवे ते मैं तृप्त हो जाऊं। सब आंदे ने प्यारिया किते एदां दी प्रीत कर लै, एदां दा स्नेह कर लै, एदां दे गुरु नाल प्यार पा लै, फिर ते तेरे जीवन दी गल बन सकती है, नहीं ते तेरा जीवन अधूरा है। मन ऐसा न हो करे हो जैसी चात्रिक प्यास,

छह उपदेश कर देने प्यारे, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गिया नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला रहा, अहंकारियां नू पिठ दे दित्ती मुख नहीं लाया। जिना नाम जपया सिमरन कीता, भावे कोई वड्डा है भावे कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालिया नू, नाम जपन वालिया नू, सेवा करन वालिया नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना की जाए शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे, अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उहदी शरण विच आ जाए।

कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है। एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया, पाछा तू मेरे ते कृपा कर, किड़ी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीं बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याछा हजूर।

गुरु नानक दी मोर लाके धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

साहब जी रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रचना तो कृपा करदे ने ते आंदे ने

आप संगत में बैठे हैं, यहां का रंग अपना है, कहीं जुआ चल रही है उसका अपना रंग है, कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग है, जहां जहां पर प्रभु ने लगा दिया वो वही

दुनिया के सब रंग सतनाम श्री वाहगुरु के अंदर आ गए। जिसने नाम जपा उसे फिर और किसी मस्ती की जरूरत नहीं रहती। शराबी को मस्ती है, जुआरी को मस्ती है, बाबा जी कहते हैं ये मस्ती जब आ जाए तो फिर इतने आनंद में डूब जाता है इंसान, किसी होछे रस में आनंद नहीं आता उसे। हजूर कहते हैं मिलता किसी किसी को है।

0: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live to Bonnie Kirk 24 hours a day from around the world.
1: कुछ समय पहले लुधियाने तो बीबी अमरजीत कौर हो रही शब्द कीर्तन वाले साढ़े को ननकाना साहब तशरीफ ले आए उन्होंने दिती हुई कविता पेश है पटने विच चन अज चढ़िया

सतगुरु कहंदे ने मन को जन्म जन्म की मल लागी, ते जन्मा जन्मा दी मैल नाले मन काला भी हो गया ते मैल नाल पारा।

जे तरना है पवजल तू ते मन भी सच्चा होवे ते जो तू मुख तू कमे वो भी सच्ची होवे जो कुछ तेरे अंदर है वो ही बाहर होवे ताके संसार नू ते तू खुश कर लेगा पर जदू मन भी सच्चा होवेगा ते मुख विच भी सच बोलेगा ते फिर निरंकार भी सच्चा सच तेरी जेगा ओ सच दा उपाशक सच वंडन वाला सच दा प्रचार करन वाला नगरी नगरी ते द्वारे द्वारे पाईसा पाई गुरदास कहंदे ने चढ़िया सोधन धरत लुकाई भाई मरदाने नू नाल लैके जगत दे मालिक कहन लगे मरदाने आ चल तैनू ऐसे इंसान नू मिलावा जेड़ा कम ता होर करदा है लेकिन उदे मन विचे भाई मैं धर्म दा कम प्या करना मैं सच्चे नू रिझा लवांगा ते सच्चे नू रिझा के मैं शायद तर भी जावा तो लंबे दी धरती नू तार दे गरीब नवाज पातशाह उथे लागे एक नगरी एक हवेली लागे जाके गरीब नवाज पातशाह खड़े हो गए बड़े आदर सत्कार नाल

विश्राम दी भी जरूरत नहीं, दो घड़ियां बहने गुरमुखा फिर असा चलते बनने। पर भोजन तो कर लो ना। आवेखो कई लोग ब्राह्मण ऋषि मुनि तपी भोजन पे करते ने, यथाशक्त सेवा भी करदा। ए अज नहीं, ए रोज ही ऐदा चलदा है। सतगुरु कहन लगे भाई फिर तो तेनू कोई तगड़ी कमाई होवेगी, की कम करदे हो तुसी? जिस वेले आखिया ना की कम करदे हो, कदे अपने वल वेंदा है, कदे बाबे वल वेंदा है।

बुरा लगता है, बुझ जाएगा। ते क्यों ना पहले ही मैं सच बोल दिया। कह लगा तुहाडे दर्शन करके बड़ा प्रभावित होया, मन गदगद हो गया, तुहाडे चरण पैर नाल ए मेरा घर भी पवित्र हो गया। ते तुहाडे सामने मेरे को झूठ भी नहीं बोलिया जांदा, मैं सच्ची गल कहना वा। मैं चोरी करदा ते चोरियां करवाना वा, पर जो कुछ लुटदा माल है वह मैं गरीबा च वंड देना वा। त्या वेख लो भोजन भी पैक कर देना। सतगुरु कह लगे तेरे सच तू असी सदके जाइए, कदे कोई चोर थोड़ा कहना मैं चोरी करदा, पर तू सच बोलिया। सतगुरु कह लगे एक सच असी भी बोलन लगे हैं।

चोर की हम परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। पर तू सच बोले है, असी खुश होए बाबा जी, खुश होए तो फिर मेरे घरों को खेते ना ना जाओ।

सतगुरु कहन लगे फिर कदे आवांगे ते छकांगे, हुण असी चलने हैं। पर जे तू चोरी ना करें ते चंगा, ए माड़ा काम है। कहन लगे बाबा एक होर मैं सच बोला, ए चोरी मेरे कोलू छुटनी कोई नहीं। एक होर मैं सच बोलदा, चोरी नहीं मैं छड़ सकदा। सतगुरु कहन लगे ना छड़, पर तू सच बोलिया ना, सदा सच बोली, असी ते जा रहे हैं, वादा कर सच बोलेगा। हां बाबा मैं वादा करदा सच बोलांगा। सतगुरु कहन लगे दो बचन होर साडे चेते रखे, गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। सच बोली, गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। ए तीन बचन चेते रख, भाई करी जा चोरी, जे तू नहीं मुड़ सकता।

बाबे दा बचन चेते आ गया पे सच बोली मैं पूछिया तू कौन है कहंदा तैनू नहीं दिस रहा मैं कौन मैनू नहीं दिस रहा तू कौन है मैं चोर हां हुण पहरेदार सोचण लगा पे चोर भी कदे कहंदा मैं चोर हां ए राजे दा कोई खास निकट वर्ती होना ते जे मैं रोक लिया तो सवेरे होर ना कोई बिपता खड़ी हो जाए जा भाई नंग जा जा अंदर वड़िया दीवे बुझा दते हीरे जवाहरात पुखराज नीलम सोना चांदी पांड बन लई बंदे दा मन बड़ा लालची होर बेंदा पर कुछ होर मिल जाए हनेरा सी हाथ मार दे टोंदे हैं किसे गिल्ली जी चीज नू लगा ते वो जबान ना लाया ते ओदे विच लून सी बाबे दा बचन चेते आ गया पे लून खा के हराम नहीं करना भाई साहब ने एक बड़ी सुंदर बात कही है

हैरान हो गया भी है ये की होया कोई चोर आया सब कुछ इकट्ठा करके उस तरह पंड बन के छड़ गया गल की सवेरे इलाके दे सारे बदमाश कट्ठे कर ले ते लगी मार पैन हुणे सोचदा है इहदा नां इतिहास ने भूमिया करके लिखे भूमिया सरदार जमीन भी बड़ी सी बाबे दा वचन चेते आ गया भी गरीब मार नहीं करनी ते सोचदा गरीब मार ते हो रही है भूमिया करे तू ते परे कोई होर जाके पेश हो गया पे राजन ए सारे नु छड़ दे मैं तेरा चोर भूमिया सरदार तू किवें हो सकता है नहीं राजन मैं ही तेरा चोर हां कदे चोर भी को कहंदा मैं चोर हां ये गल की है